कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के, तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा

0: आ गया बौलट।
1: कौन?
0: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको, चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल,

0: पर खुदा न हो, ओ, ओ, ओ, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। थैंक यू।
1: Yes.

0: बस चलते जाना।
1: अमेजिंग अमेजिंग।
2: हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगी उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी,